0: ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा

0: व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

पवित्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः सङ्घर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु सङ्कटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरानगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनस्य निरन्तरप्रयासै भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जासंकटस्य प्रभावीरीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामिरात, नीदरलैण्ड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां षड्दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पञ्चदेशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामिरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री शुक्रवासरे नीदरलैण्डदेशं सम्प्राप्स्यति। 17,2000 वर्षे स्वान्तिमयात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैण्डदेशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे

कोयल बोली दुनिया डोली, समझो दिल की बोली। सरणी से प्रोग्राम आकाशवाणी दे जलंधर के नाते हाजिर है। प्रोग्राम सुन वालों नूं पूनम दा नमस्कार। वाकई जदों सवेर की शुरुआत होंदी है, इंसान की मिठी गहरी नींद तो बाद अख खुलदी है, तो अजकल कोयल की मिठी आवाज़ सुनने मिलती है। इंज लगता है कि किसी ने खूबसूरत आवाज़ विच गा के सुरमई सवेर की, संगीतमई सवेर की शुरुआत की होवे। तो इस म्यूजिकल गुड मॉर्निंग का जदों असी जिक्र करते हैं, तो फिर इन्हां पंछियों की मिठी आवाज़, इन्हां दी चहचहाट का जिक्र करना तो बनता ही है, क्योंकि कुदरत दे ये वो संगीतकार ने, कुदरत दे वो ये गायक ने जो साड़ी सवेर नूं बहुत ही सुरीला बना देंदे ने। ये कुदरत दी खूबसूरत निशानियां, कुदरत दी खूबसूरत सौगातां सानूं याद दिलाउंदियां ने कि इंसान चाहे किन्नी भी आधुनिकता दी मशीनीकरण दी दौड़ दे विच अगे क्यों ना निकल जावे, पर ये कुदरत दीआं खूबसूरत आवाज़ां ते इन्हां आवाज़ां दा, इन्हां जीआं दा होना साडे जीवन दे विच किन्ना मायने रखदा है। ये सानूं इह वी याद दिलाउंदा है कि असीं अजकल जिंदगी दी जो मशरूफियत है, या फिर जिंदगी दे विच इलैक्ट्रिक डिवाइसिस दी जो आवाज़ां ने, या फिर दिमाग दे विच चलन वाला शोर है, उस तो परां हो के कुछ पल कुदरत दे नाल वी बिताउणे ने। खास तौर पर सवेर के उशांतमई पल जदों कुदरत अपने खूबसूरत रूप दे विच हुंदी है, वह पल जदों असी शांत हो के

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत संदेश ते इस गीत दे विच किन्ने ही संदेश सुनन नूं मिले। बावरची फिल्म दा गीत सी ते गुलजार दी फिल्म सी, जिस विच दिखाउण दी कोशिश की गई सी कि असी जिंदगी दियां छोटियां मोटियां परेशानियां नूं एक दूसरे दे नाल शिकवी शिकायतां नूं जेकर भुला दईए तां जिंदगी इन्नी खूबसूरत है। जेकर असी इस नूं भुला दिंदे हां तां किन्ना कुछ ही हासिल कर लैंदे हां। इस दे उल्ट हुंदा कई वार इंज है कि असी इन्हां छोटियां छोटियां गल्लां नूं ही ज़्यादा तरजीह दे दिंदे हां ते अपने रिश्ते अपनी जिंदगी नूं खराब कर लैंदे हां। सो ये फिल्मां ये किताबां ये विचार सानूं बहुत कुछ सिखाउंदे ने ते जिंदगी नूं बेहतर तरीके नाल जीउण दी दिशा दिंदे ने। किताबां हमेशा सानूं कुछ ना कुछ नवां दर्शाउंदियां ने, पढ़न दी एक अजिही शक्ति दिंदियां ने, एक जिहा सबर दिंदियां ने जिस दे विच असी दौड़ भज दी इस जिंदगी इस जीवन चों कुछ पल खलो लैण दा हुनर सीखदे हां। असी पंछियां दी गल कीती सी, कुदरत दी गल कीती सी। एक बहुत सारियां अजिहियां किताबां ने जो पौद्यां दी गल करदियां ने, अजिही गल करदियां ने कि जेकर पौधे बोल सकदे हुंदे तां की कहिंदे। द हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज इस किताब विच इह दस्सिया गया है कि रुख ते पौधे जड़ां फंगस नैटवर्क ते रसायणिक संकेतां राहीं एक दूजे नाल गलबात करदे ने ते खतरे की चेतावनी दिंदे ने या पोषण बारे एक दूसरे दे नाल गलबात सांझी करदे ने। ते इसे तरह ही एक होर किताब है द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। ये किताब पौद्यां दी संवेदनशीलता ते मनुखां दे नाल उहनां दे संबंधां दे बारे बहुत ही दिलचस्प तरीके दे नाल अपनी गल रखदी है। सो बहुत सारियां इहो जिहियां किताबां ने जो सानूं इहो जिहियां दिलचस्प विशियां बारे विचारां बारे सीख दिंदियां ने। पौद्यां दी गल हुण इस लई कर रहे हां कि अज इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हैल्थ मनाया जा रहा है। पौधे सिर्फ हरियाली ही नहीं देंदे सगों मनुखी जीवन का आधार भी ने। जो पौधे तंदुरुस्त ना होणगे तां इसका सीधा असर इंसानी सेहत ते जीवन ते कुदरती चक्कर ते भी जरूर पएगा। सो ये जो दिन मनाया जा रहा है इस दिन का मकसद ये समझाना ये जागरूक करना है कि पौद्या की सुरक्षा करना कितना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल दुनिया के लगभग 40% फसल कीड़िया ते बीमारियों कारण नुकसान का शिकार हो जाती है। सो ये बहुत जरूरी है कि असी इस बारे गलबात करिए। वध रही बीमारियाँ कीड़े मौसमी तब्दीली ते प्रदूषण कारण दुनिया भर दी फसलां जो प्रभावित हो रही ने इसका सीधा असर किसानों की आमदन खाण पीण दी चीज़ां दी कीमत ते साडी सेहत उत्ते पैंदा है। जो बहुत जरूरी गल है कि असी पौद्यां दी सेहत नूं ख्याल च रखदे होए उन्हां दी देखभाल करिए। चाहे साडे घरां दे विच पौधे लगे ने या फिर असी जेकर किसानां दी पौद्यां दी खेतीबाड़ी बारे गल कर लईए। इसलिए बहुत जरूरी है कि साफ ते चंगे बीज वरते जाण, पौद्यां दी रेगुलर जांच की जाए, बीमार पौद्यां नूं होर पौद्यां तों दूर रख्या जाए, लोड़ तो वध कीटनाशक ना वरते जाण ते मिट्टी ते पानी की सफाई का ध्यान रख्या जाए क्योंकि पौधे बोल नहीं सकते। पर जेकर असी उन्हां नूं प्यार करदे हाँ तां असी हर रोज़ उन्हां नूं देखदे होया चंगी तरह समझ सकते हाँ कि सानूं की कहना चाहुंदे ने। जदों भी कोई पौधा तंदुरुस्त हुंदा है तां जदों उह चमकदा है ते उसकी चमक उसकी रंगत सानूं दस दिंदी है कि पौधा खुश है। इस दे उल्ट जदों पौधा मुरझा जांदा है या फिर उसकी रंगत फिक्की पै जांदी है या उसके होर तरह के कई कीड़े मकौड़े होना शुरू कर देंदे ने जो उसनू खाना शुरू कर देंदे ने या फिर पौधा अपनी जान गुआउण लग जांदा है तां फिर असी समझ जांदे हां कि पौधे नू देखभाल की लोड़ है। सो ये हरियावल तां ही कायम रह सकती है जेकर असी उन्हां पौधियां की देखभाल कर सके। अजकल जिस तरह कंक्रीट ये जीवन हुंदा जा रहा है, हरियावल घटती जा रही है, उत्थे ये दिन होर भी ज़्यादा मायने रखता है कि असी साढ़े आस पास जो पुराने पेड़ पौधे ने पुराने दरख्त ने उन्हां नू बचा के रखिए, उन्हां दी तंदुरुस्ती दे लई कोशिशां करदे रहिए, उन्हां नू बचाए रखण दे लई उन्हां नू समय समय ते जांच करिए ते उन्हां दी खुराक दा उन्हां दे पानी दा उन्हां दी देख रेख दा पूरा ध्यान रखिए। आओ कुछ ये पौधे अपने घर दे विच बगीची दे विच बालकनी दे विच अपने आस पास अपने घर दे विच भी उगाए।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: हेलो,
2: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: बिल्कुल, इस नेहा सी बार बार इसे लिए सुनाने हैं, सांझा कर दें ताकि असी मोबाइल इंटरनेट के जरिए होने वाले फ्रॉड तो सावधान रहिए, सुचेत रहिए, सतर्क रहिए ते असी सुरक्षित हो के अपना मोबाइल चला सकी। वैसे जिंदगी जो भी कोई इम्तिहान होंदा है तो उसका ईमानदारी दे नाल, मेहनत दे नाल, जागरूकता दे नाल जेकर असी तैयारी करिए तो नतीजे अपने आप ही वधिया आने लगते हैं। तो प्रीख्या के विच विद्यार्थी जो मेहनत ते ईमानदारी नाल खुद ते विश्वास रखदिया होया परफॉर्म करते हैं तो कई गुणा बेहतर होकर भविख के लिए खुद को तैयार कर लेंगे। इस दे उल्ट बहुत ही बार इंज भी होंदा है कि असी जदों तैयारी तो मेहनत तो बचते हाँ तो गलत तरीके दे नाल स्थिति तो बच के निकलण की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट अपना चाहते हैं। अजकल कॉलेजेस दे विच प्रीख्यावां चल रही ने, अनफेयर मीनस केस इस दौरान बहुत सामने आते हैं, यानी कि नकल करदिया होया विद्यार्थी का फड़े जाना जिस नाल उसका भविख तबाह हो सकता है। सो बेहतर है कि तैयारी करके ही प्रीख्या दी जाए तो UMC जे केसिस तो बचा जाए। इस बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बारे

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सोने से प्रोग्राम तो इस वेले आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते सुन रहे हो। आज अंतरराष्ट्रीय तौर पे नर्सिंग डे मनाया जा रहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगल होना नू याद किया जा रहा है, जिन्होंने इस पेशे दी इस खूबसूरत सेवा दी समर्पण भावना दी शुरुआत दे नाल इस दिन नू कह सकते हैं कि जन्म दिता सी। फ्लोरेंस नाइटिंगल नू लेडी विद अ लैम्प भी कहा जाता सी, क्योंकि जंग दे दौरान उन्होंने देखा गया कि वह जख्मी सिपाहियों की सेवा करते सन। रात दे वेले जदों सारे सौ जाते सन तो वह हाथ विच लैंप लैके हॉस्पिटल दे वार्डां विच मरीजां नू देखण जाते सन। जख्मी सिपाही उन्हां नू देख के हौसला महसूस करते सन। उन्हां दी देखभाल सफाई ते मरीजां दी दया ने नर्सिंग दे खेतर नू नवीं पहचान दित्ती है। सो वह लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगल अज दुनिया भर दे उन्हां नर्सिंग दे खेतर दे विच नर्सस नूं प्रेरणा दित्ती उन्होंने कि वह भी इसी तरह सेवा भावना दे नाल इस प्रोफेशन दे विच आ सकते ने। फ्लोरेंस नाइटिंगल दे हाथ विच चाहे लैंप सी पर वह प्रतीक सी कि वह अपनी सेवा दे नाल समाज दे विच रोशनी लैके आ सकते ने। जो मरीज किसी भी दुख दे नाल जूझ रहे ने उन्होंने जीवन चो हनेरा दूर कर सकते ने, इसलिए दुनिया ने उन्होंने लेडी विद द लैंप कहा। सो ये जो नर्सिस ने साड़ी जिंदगी दे विच अजे मोड़ ते सानू जदों मिलदियां ने, जदों असी बीमार होंदे आ, जदों जिंदगी दे विच ना दुखां नाल जूझ रहे होंदे आ, तां असी सारे महसूस करदे आ कि साड़ी किन्नी सेवा भावना दे नाल उह लगातार डटे रहिंदे ने। उस वक्त भी जदों डॉक्टर मौजूद नहीं हुंदा, नर्स हमेशा तुहाडे नाल मौजूद हुंदी है। अजे वेले जदों हस्पताल दे कमरे दे विच चुप छाई हुंदी है तां

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਵਜੇ ਸੁਣਿਆ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ 8:30 ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਬਰਾਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित

0: करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज चार अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन चार कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
2: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
7: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान

0: उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
2: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
4: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त तो पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड

0: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF to also take oath. ED arrests former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
3: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाए, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
2: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
3: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
2: Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. Four ministers, including two from BJP and one each from AGP and BPF, will also take oath along with Chief Minister. We have more from a correspondent.
4: Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, four other members of the Council of Ministers will also be sworn.

0: U.S. President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: नमस्कार ये आकाशवाणी है खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा पहला बुलेटिन दियां खास खबरां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया संकट दरमियान विदेशी मुद्रा बचाने लई लोकां नूं ईंधन ते विदेशी उत्पादां दी वरतों घटाउण दी कीती अपील सीनियर बीजेपी नेता हिम्मत बिस्वा शर्मा अज गुवाहाटी च असम दे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकणगे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले च पश्चिमी बंगाल दे साबका मंत्री सुजीत बसु नूं कीता गिरफ्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार तो संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे ते इटली दे 6 दिन दौरे ते होणगे रवाना अमरीका दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान नाल जगबंदी बेहद कमजोर स्थिति विच है अते बंगलादेश ने भारत विच आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप तो अपनी टीम दे हटन दे कारणां दी जांच लई एक 3 मैंबरी जांच कमेटी कायम कीती ते हुण खबरां विस्थार नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पछमी एशिया संकट दरमियान विदेशी मुद्रा की बचत लई लोकां नूं ईंधन बचाउण ते विदेशी उत्पादां की वरतों घटाउण की अपील की है कल शाम गुजरात के वडोदरा विच एक जनतक रैली नूं संबोधन करदिआं श्री मोदी ने पैट्रोल ते डीजल की खपत घटाउण ते घर तों काम करन ऑनलाइन क्लासां अते वर्चुअल मीटिंग वर्गे कोविड युग के उपरालिआं नूं अपनाउण की अपनी अपील नूं दोहराया दरामद नूं घटाउण ते देश नूं इस संकट नूं दूर करन च मदद करन लई समूहिक उपरालिआं की जरूरत ते जोर दिंदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समय लोगों को एकजुट होने ते देश के स्रोतों ते बोझ घटाने लिए अपनी जिम्मेवारी निभाने की जरूरत है
2: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं अपने गांव अपने शहर अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है
1: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ LPG ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1.26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें कार पूलिंग का विकल्प चुने रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं
1: रसायन ते खादा मंत्रालय दे वधीक सकत्तर अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश कोल सौनी सीजन लई खाद दे भंडार दा 51% तो वध है उन्हां कहा कि किसानां लई उपलब्धता नूं यकीनी बनाउण वास्ते वाधू 97 लाख मीट्रिक टन खाद दा प्रबंध कीता गया इस दौरान बंदरगाहां जहाजरानी ते जल मार्ग मंत्रालय दे निर्देशक उपेश कुमार शर्मा ने दस्या कि समुंदरी खेत्र विच सारे भारतीय जहाज सुरक्षित ने उन्हां दस्या कि मंत्रालय ने हुण तक 3000 तों वध भारतीय मलाहां दी सुरक्षित वापसी नूं यकीनी बनाया है विदेश मंत्रालय के वधीक सकत्तर असीम महाजन ने दस्या कि भारतीय दूतघर ते कौंसलेट समय सिर सहायता प्रदान करन लई लगातार हैल्पलाइना चला रहे ने ते जरूरी सलाह मशवरा भी कर रहे ने भारतीय जनता पार्टी के नेता हिम्मत बिस्वा शर्मा अज दूजी बार असम के मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकणगे उन्हां दे नाल चार मंत्री भी सहुं चुकणगे जिन्हां विचों दो बीजेपी के अते एक एक सहयोगी असम गण परिषद ते बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट तो होणगे ਇਹ ਅਸਮ 'ਚ ਤੀਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹਿੰਮਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ NDA ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਹੁੰ

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

तेरे हसे या चलन फूल चढ़िया, तेरे हसे या चलन फूल चढ़िया, ते एक बारी हंस के बखा, ते एक बारी हंस के

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा हूँ।
0: फिर तो
1: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ, इकल्ले। तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
2: 10 लाख दियो, बच जाओगे।
0: सर इन्हें कितों ले आवां?
2: एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लई
1: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
0: सर 2 लाख?
3: की होया पापा?
0: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल जो ड्रग्स मिले हन।
1: ओए
0: कट दिता।
3: घबरान दी लोड नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जा वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उना नु कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नु रिपोर्ट करो। जे तुसी स्यानप नहीं विखाओगे
0: आप पैसे गवाओगे।
4: आरबीआई कहिंदा है
5: जानकार बनो, सुचेत रहो।

गाइड फिल्म दाए बेहद खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी उन्होंने देवास वे तुसे सुना। देवानंद ते वहीदा रहमान इस फिल्म दे मुख करा किरदार सन। देवानंद होनी पहला रोज़ी दे किरदार दे लई किसी होर एक्ट्रेस नूं सोच रहे सन, पर आखिर दे विच उन्होंने वहीदा रहमान नूं ही कास्ट किया। तो ये उन्होंने फैसला हिस्टोरिक भी साबित होया। अज भी फिल्म क्रिटिक्स इस फिल्म नूं भारतीय सिनेमा दियां सब तो खूबसूरत आर्टिस्टिक ते सार्थक फिल्मां दे विच शामिल करदे ने। इस फिल्म दा जो संदेश है, अपनी पहचान, अपनी आज़ादी, अध्यात्मिकता, इहो जिहे जो सुनेहे ये फिल्म दिंदी है वह अज भी सार्थक ने, बल्कि असीं कह सकते हैं कि अज दे जीवन दे विच होर भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गए ने। गाइड फिल्म दे सारे ही गीत सुपरहिट रहे सन। इसी फिल्म चो हुण प्रोग्राम दा अगला गीत लता मंगेशकर हुण दी आवाज़ में सुनते हैं।

0: बदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भवका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है। ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?

0: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
1: जी
0: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत ज़रूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
0: जी
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज़्यादा गहरा रंग ना हो।
0: जी
1: सफ़ेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
0: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
0: अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन, मोहन।
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या, विद्या।
1: अरे ये तो बेहोश हो गया।

0: मोहन मोहन मोहन कुछ बोल मोहन।
1: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
0: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
1: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
0: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
1: हाँ हाँ डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ ऐसे चलो।
0: हाँ हाँ चलिए चलिए।
1: आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं।
0: जी
1: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
2: कौन है भाई, अभी आया?
1: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
1: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
1: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
0: जी।
3: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
1: हाँ जी जा।
3: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
1: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
1: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
0: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
0: जी।
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
0: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
1: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
1: जी।
0: और अगर लू लग जाए तो?
1: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछ कर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
0: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
0: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
1: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
0: जी।
1: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
0: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
3: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
1: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर।
1: ठंडक में खेले भरपूर।
3: आग बरसाती धूप।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
6: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
7: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
8: नमस्कार
7: साथियों। भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
8: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
7: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
8: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
7: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
8: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
7: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
8: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
7: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
8: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल

0: ने कई टूर्नामेंट जीते।
1: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। एल्बर्ट भी आसपास के गांवों में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो एल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
0: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
1: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब एल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
0: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
1: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
0: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
1: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
0: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
1: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
0: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
1: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
0: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
1: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
0: लेकिन लांस नायक एल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
1: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
0: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े।

0: अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: तुसी सुन रहे सी NCERT वालों स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।
5: ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੌਕਿਆਂ ਛਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਹਾਕੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ ਦਾਗ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਅ ਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਬਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਾਜ਼ੀ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश ने आज दिया हुण तक दिया मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पछमी एशिया संकट दरमियान विदेशी मुद्रा बचाउण लई लोकां नूं ईंधन अते विदेशी उत्पादां दी वरतों घटाउण दी अपील कीती है। सीनियर बीजेपी नेता हिम्मत बिस्वास शर्मा अज गुवाहाटी च असाम दे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकणगे। इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दक्षिणी

दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले विच पच्छमी बंगाल दे साबका मंत्री सुजीत बसु नूं गिरफ्तार कीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार तों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ते इटली दे 6 दिना दौरे ते रवाना होणगे। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश कोल अनाज दे ढुकवें भंडार मौजूद ने, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। पंजाब राज चोण कमिश्नर वालों सूबे दीआं 105 स्थानक संस्थावां लई चोणां 26 मई नूं करवाउण दा ऐलान। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं जमात दा नतीजा ऐलानिया, पास फीसद 94.52% रही, कुड़ियां वालों मुंडियां नूं पिछे छड्डदिआं फरीदकोट दे जैतो दी हरलीन शर्मा रही अव्वल। जलंधर पुलिस कमिश्नरेट ने जिले विच अमन कानून दी व्यवस्था नूं बनाई रखण लई समूह रेस्टोरेंट, क्लब ते होर अजिहीआं लाइसेंस शुदा खाण पीण वालीआं थावां अद्धी रात 12 बजे तक मुकम्मल बंद करन दे हुकम जारी कीते। ते IPL क्रिकेट विच अज गुजरात टाइटन्स दा मुकाबला अहमदाबाद च शामी 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद नाल होएगा। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ,
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ?
2: ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਰਾਸਤਾਂ ਤੋਂ ਜੀ।
1: ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ?
2: ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਬੈਠੇ ਜੀ।
1: ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ?
2: ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ।
1: ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗੀਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਨ।
2: ਹਾਂਜੀ,
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ।
2: ਧੰਨਵਾਦ,
1: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।

0: बढ़िया
1: टेलीफोन
0: बंदा
1: लगवाउंदी
0: जी।
1: जहां सिर्फ तानू ही है ना
0: यार सारे नहीं है पर टाइम भी थोड़ा जा इदा ही
1: जी
0: कढ़ना पैंदा, बाकी
1: चलो
0: कॉल भी
1: तुसी
0: थोड़ी
1: सारे दे
0: महंगी
1: बिहाफ
0: पैंदी
1: ते
0: है।
1: तुसी गल कर लेंदे हो
0: हाँ जी सारे वालों जी
1: ते
0: बिल्कुल
1: गाना फिर तानू ते ताडे दोस्तां नू केड़ा सुनाइए फिर अज
0: गाना हैगा जी एक परदेसी मेरा दिल लै गया।
1: फागुन फिल्म चोएंगी
0: हाँ जी बिल्कुल
1: ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया बाजवा जी कॉल करने के लिए
0: थैंक यू।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने

0: की अपील दोहराई। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापट्टी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोहरीघाट औड़िहार यात्री पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। इससे मऊ और गाजीपुर जिलों के यात्रियों को किफायती और सुरक्षित रेल सेवा उपलब्ध होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस रेल सेवा का विस्तार जल्द ही वाराणसी तक किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख चार लेन का गलियारा गंगा के दक्षिण में प्रयागराज कानपुर आगरा दिल्ली मार्ग के साथ विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान के फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 474 अंक लुढ़ककर 75,541 पर, जबकि निफ्टी 126 अंक की गिरावट के साथ 23,689 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, डीआरएम 864 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। समा हो गया है तुहाडे सब दे मन पसंदीदा प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी दा, ते आओ फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं। तुहाडा दोस्त गौरव है तुहाडे नाल 11 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक। सुनते हैं प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: ਜੀ ਕਲੇਰ ਕੰਠ ਤੇ ਗਾਏ ਇਸੇ ਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 103.6 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लाऊं जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
1: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में

0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से असी जुड़े हुए हैं आकाशवाणी जलंधर तो। और समा हो गया भैणा दे अपने प्रोग्राम वस्ते वेड़े का, तो आओ सुनते हैं प्रोग्राम वस्ते वेड़े।

0: एक्सपीरियंस कितना हुआ है, बिकॉज 2 महीने पहले सोन तो पहले मेरे बहुत तेज सिरदर्द सेगा, मैंनू कुछ भी समझ नहीं आ रहा सी व्हाट शुड आई डू। ते उरे विच मैं की किता, मैं सिर्फ टैप किता विदाउट स्पीकिंग, बिना
1: जी
0: कुछ बोले मैं टैप किता। जो मैं टैप किता विद इन 5 मिनट्स मेरा सिरदर्द बिल्कुल ओके सी, इदा लग ही नहीं रहा सी मैं 1 घंटा पहले मैनू सिरदर्द सेगा।
1: हुण
0: यस
1: फिर एक बार फिर असीं टैपिंग वाल मुड़दे हाँ।
0: जी
1: ये टैपिंग की टेक्निक है, इस दे बारे कुछ दसो। तुसीं
0: सिया
1: पॉइंट्स की गल कीती
0: हाँ
1: सी।
0: जी, 9 पॉइंट है।
1: जी
0: टैपिंग नाल साडे पूरी सिस्टम ओपन अप हुंदा बॉडी च, जिदा आपां कहीए रूट चक्रा तो लैके क्राउन चक्रा एनर्जी फ्लो करदी है, वो
1: जी
0: इन्ना जबरदस्त फ्लो हुंदा कि तुहानू अपने शरीर दे अंदर वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी महसूस हुंदी है। टैपिंग कोई भी बहुत जेंटली असी करनी है, कोई भी असी जोर जबरदस्ती ना नहीं करनी, असी
1: जी
0: माइंड च कुछ भी नहीं सोचना। बट
1: जी
0: यस, जो असी वेरियस इशू नाल डील करदे, फॉर एग्जाम्पल रीसेंटली हुनी स्ट्रेस दा ही मैं जूम सेशन लै रही सी, तो उन्हें विच स्ट्रेस दा एक लेडी नू इशू सेगा, ते अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम असी स्क्रिप्ट तैयार करदे हैं, जो
1: जी
0: मैं बोल के उन्हें नाल टैप कर दी है, एंड रिजल्ट्स थानू सेशन दे विच मिलते हैं।
1: जदों कोई टैपिंग दे बारे या फिर EFT टेक्निक बारे सुनदा है, ये टेक्निक दा लाभ लैण दे लई उसनू किथे जाना पैंदा है? कि इहो जे कोई सेंटर्स ने, हॉस्पिटल्स दे विच है या किथे?
0: बिल्कुल, मैं जूम क्लासेस कंडक्ट करती हैं
1: जी
0: ऑनलाइन, 1-to-1 लो या जूम ते लो, सेम इफेक्ट आएगा। बिकॉज जो टेक्निक, चाहे तुहानू बिलीव है या नहीं है, बट लाइफ कोच, बीइंग अ लाइफ कोच, मैनू इस ते 100% बिलीव है। एंड मेरे को टेस्टिमोनियल्स प्लस ईमेल्स भी है, जिथे लोगों ने जो भी उन्हें दा रिजल्ट रहा किन्ना अच्छा रहा उन्होंने मैनू भेजे, एंड मैं उन्होंने अलग अलग जगह पर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया हुआ है।
1: जी जदों असीं इहो जे कोई टैक्निक की गल करदे ना, जो कि साड़ी लाइफ कोचिंग दे नाल जुड़िया होया है, लाइफ दी बैटरमेंट दे लई जुड़िया होया है, तां बहुत सारे इहो जे कोच साड़े सामने ने आ सोसाइटी दे विच। एक व्यक्ति नूं किसी भी कोच तो जाण तो पहला कीड़ी कीड़ियां गल्लां दा खास ख्याल रखना चाहिए ताकि कि वह मिसगाइड ना हो जाए?
0: बीइंग अ लाइफ कोच, मैं तो सब तो पहले यही कहूँगी, जेड़ा बंदा लाइफ कोच है वह अपने आप नू हमेशा ही पॉजिटिव और अच्छे लेवल ते ऊपर रखता, ताकि वो कोई भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी उन्हें इफेक्ट ना कर पाए।
1: जी
0: सेकंड, कोच का सब तो वड्डा लाइफ का प्रिंसिपल है कि जो गल तुहाडी मेरे नाल हुई है या किसी होर बंदे दी गल मेरे नाल हुई है, उन्हें डिस्कलोज नहीं करना हुंदा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है बीइंग कोच।
1: जी
0: कोच तुहानू ना केवल लाइफ जीन का तरीका दसदे है, बट तुहाडी लाइफ नू किद्दां अच्छा बनाना है, मोटिवेट तुहानू किद्दां करना है। कई बार इदां हुंदा है साडे लाइफ 'च बहुत लो मूवमेंट्स हुंदे है,
1: जी
0: असीं की करदे हैं, जां तां चाय दा कप पी लिया और जां रजाई लै के सो गए।
1: जी
0: जनरली असीं यही करदे हैं,
1: बिल्कुल
0: बट उन्ना जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी चलती है हारे हुए मैदान ते फिर दोबारा खड़े होना और
1: जी
0: अगे चलना। तुसीं कभी पानी दा बहाव देखो,
1: बिल्कुल
0: पानी हमेशा अगे जांदा, चाहे रस्ते 'च किन्ने ही पत्थर, कंकड़ जब मिट्टी या गारा आए, वो कभी
1: जी
0: पिछे नहीं मुड़ता। सेम साड़ी लाइफ है, सानू लाइफ से फ्लो दे नाल चलना चाहिए। वॉट एवर चैलेंजेस जो साड़ी लाइफ से आ रहे हैं, वो सानू पॉलिश कर रहे हैं,
1: जी
0: ना कि सानू नीचे दिखा रहे हैं।
1: जी ये जो लाइफ कोच है, ये EFT टेक्निक दा ही हिस्सा है या अलग तौर ते लाइफ कोच भी हुंदे ने?
0: नहीं, ये EFT दा ही पार्ट है, बिकॉज मेरी
1: जी
0: स्पेशलाइजेशन ही EFT लाइफ कोच है। मैं ना केवल लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, चाहे वो लेजीनेस है, स्ट्रेस है, जो तो सर्वाइकल की बहुत इशू है, तो राती नींद नहीं आती, लोग स्लीपिंग पिल्स लेंदे है, उस दे नाल नाल मैं मोटिवेट भी करती, ताकि बंदा जिहड़ा लेवल 100 ते पहुंचे है जां 80 ते पहुंचे है, वो मुड़ के 0 तो ना आए। बीइंग अ लाइफ कोच है मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है लाइफ का।
1: जी तुहाडे नाल गलबात करके हुण तक साडे सुनण वालिआं नूं की क्लियर होया है? तुसीं जो मानसिक पद्धर ते समस्यावां ने, चाहे उस दा असर साडे शरीर ते हो रिहा है, चाहे साडी सोच समझ ते हो रिहा है, साडी लाइफ ते हो रिहा है, उसनूं तुसीं सॉर्ट आउट करदे हो?
0: बिल्कुल, और यह चीज़ें दोनों पैरल चलती है। इहदा
1: जी
0: नाम ही इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इसलिए है, बिकॉज जो असीं टैपिंग करते, मैं तुहानू टैप करते करते इदा दी स्क्रिप्ट तुहाडे नाल बोलनी है, जिहड़े तुहाडे अंदरों रूट कॉज नू खत्म करती है।
1: जी
0: फॉर एग्जाम्पल, जे तुहानू सर्वाइकल का इशू है, पूरी डिटेल लैकर तुहानू सर्वाइकल कदों सी, कित्थों स्टार्ट होया, तुहाडी फैमिली 'च कोई सी,
1: जी
0: फुल हिस्ट्री तो बाद असीं ये टैपिंग शुरू करते हैं। बिल्कुल बैकग्राउंड तो बिना नहीं टैपिंग होंदी, और जो मैं टैप करना, तुहाडी अंदर तक जिहड़ी तुहाडी फीलिंग्स वो हिल जाती। मेरे नाल बहुत बार इदा भी होया कि जो मेरे नाल सैशन लोग लेंदे हैं, वो
1: जी
0: बिल्कुल उन्होंने इमोशंस कंट्रोल नहीं, वो मेरे सैशन से रोंदे भी है। हो सकता है सैशन के ड्यूरिंग तुहानू कितें पेन भी महसूस होए, फॉर एग्जाम्पल नैक च, शोल्डर से या गले से, ਉਹ ਬਹੁਤ

0: रेखी हीलर, जे कोई बंदा कहे कि मैं रेखी करवानी है, कि मेरे हस्बैंड दा कितने चक्कर है किसी कुड़ी नाल ते वो रेखी कर दो, तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी,
1: जी
0: बिकॉज़ गलत पर्पस ली रेखी बिल्कुल यूज़ नहीं होंगी।
1: जी
0: जी
1: सानू उम्मीद है कि सुनने वाले दियां गलत फहमियां बहुत ज़्यादा हद तक दूर हो गई होनगियां। हुण डॉक्टर हुण रंजना वर्मा जी, एक गल ना असी सुनने वाले सारे ये भी महसूस करते होंगे कि जो हरेक नू शिकायत होंगी है कि टाइम ही नहीं है। शायद जो रेखी करवाना चाहते होंगे या लाइफ हीलिंग दे किसी भी टेक्निक जाते होंगे जिथे तुसी गल कीती है कि स्पर्श की लोड़ है या हीलिंग दी टैपिंग की लोड़ है, उन्होंने लगता है कि टाइम कितने है साढ़े को, इन्ना मेडिसिन खाओ तो आराम मिल जाएगा। खास तौर पर उन्होंने तुसी इस टेक्निक दे विच आने लिए की सुनेहा देना चाहोगे?
0: टाइम दे रिगार्डिंग मैं यही कहूँगी, देखो तुहाडे को भी 24 घंटे है, मेरे
1: जी
0: को भी 24 घंटे, वो साढ़े ते डिपेंड करता असी किद्दां यूटिलाइज करने।
1: जी
0: असी खाना खाण नू, बनाण नू, अपने ऑफिस दे काम करन नू टाइम निकालते हैं, असी उहदे वास्ते भी टाइम निकालते जो असी किट्टी पार्टीज या फिल्म देखण जाना है,
1: बिल्कुल
0: ते अपनी लाइफ लिए असी कुछ भी नहीं कर रहे। मैनू लग रहा है जे असी इस स्टेप ही नहीं चक रहे तां जिंदगी तां एक बार ही मिली है,
1: जी
0: दोबारा तां वापस मिलनी नहीं,
1: बिल्कुल
0: ना 2026 वापस आना है ते ना है टाइम वापस आना है।
1: जी
0: जिन्नी जल्दी करांगे उन्ना ही साडा फायदा है, जिन्नी डिले करांगे प्रॉब्लम दी जड़ा वधदी जाणगी। छोटे पौधे नू जे असी कहीए जिंदगी च लगाना किन्ना ईजी है, और वड्डे पेड़ नू उखाड़ना
1: जी
0: बहुत मुश्किल है। जड़ा पक्किया होण तुहाडे स्ट्रेस दी, तुहाडे एंगजाइटी दी, तुहाडे लेजीनेस दी, हुणी फायदा है ठीक कर लिए
1: जी
0: जदों की उहदी जड़ा फैलिया नहीं है।
1: आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। ते
0: बिल्कुल
1: हुण तुहाडे कोल जांदे जांदे ये भी सवाल करदे हैं कि जो तुसी किसी भी पेशेंट नू हील करदे हो, किसी भी व्यक्ति नू तुसी हील करदे करदे उसनू की सलाह दिंदे हो कि उसका लाइफ स्टाइल, उसकी डाइट, उसकी सोच किहो जी होए, क्योंकि ये भी चीज़ां नाल नाल बहुत हेल्प करनगियां।
0: सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी है।
1: जी
0: लाइफ तुहाडी भी इदां दी नहीं है, मेरी भी इदां नहीं है, जिच मुश्किलां नहीं है।
1: बिल्कुल
0: हर एक बंदे दी अपनी एक कहानी है, जे
1: जी
0: असीं जद तक वो बंदे नूं पढ़िया नहीं तो साडे सामने कहानी आई नहीं।
1: बिल्कुल
0: नेचर च टाइम स्पेंड करो, तुहाडे जिहड़े बालकोनी च गमले बूटे पए करी उन्हां नाल भी गल करो, करे उन्हां दी गोडी करो,
1: जी
0: चिड़िया दी चहचहाहट उन्हां नूं दाना पाओ। एक गल मैं कहना चाहूंगी कि तुसीं जरूर टाइम स्पेंड करो अपने नाल, दिन
1: बिल्कुल
0: दे 10 मिनट करो या 15 मिनट जाए
1: जी
0: 5 मिनट, पर जरूर करो। मेडिटेशन नूं अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाओ, मेडिटेशन नाल तुसीं वैसे ही बहुत अच्छे रहने हो।
1: तुसी गल कीती कि इस दे विच लाइफ स्टाइल, देखो असी जो पूरी दुनिया दे नाल साडा कनेक्शन हो गया, जुड़ गए हाँ, पर अपने नाल टुट रहे हाँ असी।
0: बिल्कुल बिल्कुल है, साढ़े नाल असी अपने नाल कनेक्शन बनाई दा नहीं। मैं अक्सर यह गल कहनी है अपने क्लाइंट्स नू भी कहनी है कि असी लोगों का हाल तो पूछते, तुसी किवें
1: जी
0: हो, अज किदा दा रहा दिन, करी अपना हाल भी पूछ के देखिया, करी
1: जी
0: अपना शीशे से खड़े होके अपने नाल गल कीती, करी अपने आप नू निहारिया, सवेरे उठ के शीशे दे सामने खड़े होके यही वर्ड बोल दो ना, आई लव यू, नो वन इज बैटर दैन मी, तुसी देखो
1: बहुत
0: तुहाडी ऊर्जा किन्नी उपर जाएगी।
1: अच्छे रंजना वर्मा जी, जिस तरह अजकल दे जीवन शैली दे विच बहुत सारे समस्यावां वध गईयां ने मानसिक शरीरक पद्धर ते, तां असी सोचदे हां कि दवाइयां खा के और इलाज करा के असी उस तों निजात पालांगे, तां इह कई वारी संभव नहीं हुंदा, क्योंकि बाकी जो लाइफ स्टाइल टैक्नीक्स ने उन्हां नूं अपनाउणा वी जरूरी है। जिस तरह इह टैक्नीक्स EFT, लाइफ कोचिंग, टैपिंग, रेकी, इसका कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही फायदा है, तुहाडी जिंदगी नूं बदल के रख सकदी है।
0: बिल्कुल 100% ट्रू,
1: बहुत
0: हंड्रेड
1: बहुत
0: परसेंट
1: शुक्रिया रंजना वर्मा जी प्रोग्राम चाहने के लिए, साढ़े सुनने वालों के नाल इन्हां टेक्निक्स के बारे जानकारी साझी करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।
2: सो हुणे असीं सुन रहे सी गलबात रंजना वर्मा जी दे नाल, ते गलबात कीती हुई सी पूनम जी ने, और जदों असीं खास करके गल करदे हां इन्हां सारियां गल्लां बातां दी, उस सकारात्मक सोच दी, उन्हां पहलुआं दी, साडी जिंदगी दे जिहड़े असीं अपने लिए बिताए हुंदे ने, अपने लिए सोचे हुंदे ने, और सच्चियों अमन कहना बनता है एक बारी तो शीशे वाल देख के कि आई लव यू अपने आप नू। ये सब तो सोहनी गल लगी, बाकी तो सारिया ही गल्लां बहुत ही ज़्यादा वधिया सी
3: जी बिल्कुल। सो बहुत सारियां गल्लां दे उत्ते चानना भी पाया
2: जी।
3: उन्होंने, ते कई वारी कुछ जड़ियां पॉजिटिव अपनी जिंदगी दे विच गल्लां असी रखणियां ने, उन्हां नू
2: जी
3: रखण दी बजाय असी नाल बहुत सारियां नेगेटिव चीज़ां नू भी
2: रख
3: लै
2: लें
3: आने आ।
2: बिल्कुल जी
3: सानू ये हुंदा है कि साडी मानसिक शांति तो इलावा दूजे दे दिमाग दे विच की चल रहा असी ओह पता कर लईए।
2: बिल्कुल
3: सो
2: बिल्कुल
3: रंजना जी ने काफ़ी चंगी तरह उन्हां गल्लां दे उत्ते चानना भी पाया, ते उन्हां ने यह दस्सिया कि मैं नैगेटिव चीज़ां नू सपोर्ट नहीं करती,
2: जी
3: इस लई कामयाबी का एक राह यह भी बनता है।

0: ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.cybercrime.gov.in ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
1: ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਬੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਿਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਪਿਆ ਸਵਾਰਿਆ ਚੌਂ ਤਰਾ, ਡੇਕਾਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਵੀਰੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ, ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਾਮਾ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਬਾਜਰਾ ਮੈਂ ਕੁੱਠੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਜਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
2: ਲਿਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਅਮਨ
1: ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
2: ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੀ,
1: ਨਮਸਕਾਰ।
3: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
4: ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
5: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधिर द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
4: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग

0: अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़क कर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। श्रोतो आओ हुण असी तुहानू साढ़े बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा देंदे चलिए।

आशा भोसले तुसी सारे जानते हो और आनंद बख्शी ने इस गीत दे जड़े बोल सन वो लिखे सी। कल्याण जी आनंद जी ये इस गीत नू कंपोज करते हुए तुहानू मिलणगे यानी कि संगीतबद्ध करते हुए मिलणगे। और आशा भोसले जी की गल करिए एक स्वर्णमय सफ़र यानी कि एक सुनहरा सफ़र जड़ा है उदी गल हुंदी है। पिछे जी वो सानू छड़ के चलाना कर गए एक बहुत वड्डा घाटा जड़ा कदी भरिया नहीं जा सकता फिल्म इंडस्ट्री नू म्यूजिक इंडस्ट्री नू वो है। लेकिन उन्हां दे गाए हुए जड़े गीत ने वो हजे तक भी साडे दिलां दे विच ने। तो आओ फिर प्रोग्राम दी जिहड़ी शुरुआत है वो ऐसे ही गीत नाल करते हैं और बहुत सारिया गल्लां होर करांगे असीं तुहाडे नाल। ये जिहड़ी फिल्म दी मैं गल कर रहा ये एक गौथिक हॉरर स्टोरी सी यानी पुनर जन्म दी कहानी और पुनर जन्म दी एक मान्यता दे अनुसार इस फिल्म जिहड़ी सी वो बनेगी और बहुत सारे होर भी इहदे विच जिहड़े किरदार सी निभाए गए सन। करिए फिर प्रोग्राम की शुरुआत इस खास गीत के नाल। तुहाडा अपना दोस्त गौरव पेश कर रहा प्रोग्राम फौजी वीरा लई।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

जी सरकार, आइए, थोड़ा स्वागत है आकाशवाणी जलंधर दे वेड़े प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरा लई। फौजी वीरो, जे गीत संगीत की गल कर रहे सी तां अज हॉरर जॉनर जड़ा है, यानी कि जड़ियाँ डरावनियाँ फिल्म है उन्हां दे गीत संगीत नूं चलाण दा मेरा दिल कर रहा सी, तुहाडे नाल ओह गीत सांझे करां। इदां दीआं फिल्मां जिहड़ियां पुनर्जन्म दे विच या जादू टोने दे उपर बणियां और उन्हां दे मशहूर गीत जिहड़े ने ओह तुहाडे नाल सांझे कर रहे हां। तो अगला जिहड़ा गीत तुहानूं सुणाउण जा रहे हां ना, ओह सुणाउण जा रहे हां इदां दी ही सस्पेंस हॉरर फिल्म नील कमल दा। 1968 दे विच फिल्म आई सी जिहदे विच वहीदा रहमान, राजकुमार और मनोज कुमार जिहड़े ने इन्हां ने महत्वपूर्ण भूमिकावां निभाईआं सन। और ये जिहड़ी फिल्म है ये भी पुनर्जन्म की कहानी सी। वहीदा रहमान सीता जिहड़े रात नू नींद चलन दी उन्हां दी बीमारी हुंदी है और एक पुराने महल दे विच पहुँच जांदे ने जिथे एक आत्मा राजकुमार, सोचो आत्मा वह भी राजकुमार जी दी ज्ञानी दी आवाज़ दे विच जिहड़ी आत्मा उन्हां नू पुकारदी है। ते इहदे गीत बहुत सुपरहिट होए ने। अगर मैं गीतां दी गल करां इस फिल्म दी, ते इहनां दा एक गीत जिहड़ा आलमोस्ट हर विआह दे उपर चलदा है। तुसीं कहोगे वी हॉरर फिल्म दा गीत हर विआह ते चलदा है? जी हाँ, वो है बाबुल की दुआएं लेती जा। इदां दा गीत जदों भी डोली जांदी है तां हर जिहड़ा शख्स है उहदे मूँह दे विच्चों ही ये गल निकलदी है। और इहदा एक होर गीत भी है इस फिल्म दा जिहनूं अज भी लोग जदों अपने न्याणे नूं अपने बच्चियां नूं प्यार करदे आ या लोरी गाउंदे आ ना, वह गाउंदे ने उसी तुझे सूरज कहूँ या चंदा। और हर गीत इस मूवी का सुपरहिट रहा है। जिहड़ा गीत मैं लेकिन तुहानूं सुनाउण जा रहा हाँ वो गीत राजकुमार दे उत्ते फिल्माया गया है और फिल्म की रूहानी ते रहस्यमई थीम नूं दर्शाउंदा है। वो किहड़ा गीत है जो तो तुसीं सुनोगे उदों तुहानूं पता लगेगा। उस गीत नूं गाया है मुहम्मद रफ़ी होरां ने और लिखिया है साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया है रवि ने। तो फिर सुनिए ये गीत।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म जुमे को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचेंगे, जहाँ वो सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से तवानाई से मुतालिक इश्तराक और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इसी रोज़ नीदरलैंड्स में शाह विलियम अलेक्जेंडर, मलिका मैक्सिमा और वज़ीर-ए-आज़म रोब जेटेन से मुलाकात करेंगे। स्वीडन में जनाब मोदी वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टेरसन के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ सनअत से मुतालिक यूरोपियन राउंड टेबल से खिताब करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी नॉर्वे के दौरे पर जाएंगे, जहां वो तीसरी भारत नॉर्डिक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म जोनास गेयर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली जाएंगे और सदर सर्जियो मेत्रेला और वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के आइंदा दौरे से हाल ही में किए गए भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती समझौते के तनाजुर में यूरोप के साथ मुख्तलिफ शोबों, ख़ासतौर से तजारत और सरमायाकारी के शोबे में भारत की साझेदारी मज़ीद मजबूत होगी। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 का इम्तिहान मनसूख करने का फ़ैसला किया है, जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में दाखिले के लिए इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने बताया कि ये फ़ैसला तलबा के मफाद में और उस ट्रस्ट को तस्लीम करते हुए किया गया है जिस पर कौमी इम्तिहान का निज़ाम मुनहसर है। एजेंसी ने यह भी कहा कि हुकूमत ने इस मामले को तफ्तीश के मरकज़ी ब्यूरो CBI को सौंपने का फ़ैसला किया है, ताकि पेपर लीक के इल्ज़ाम की भरपूर तरीके से जाँच की जा सके। एजेंसी ने कहा कि वो CBI को अपना पूरा तआवुन देगी और तफ्तीश के लिए तमाम तर मवाद, रिकॉर्ड्स और मदद फराहम करेगी। एजेंसी ने कहा कि NTA ने यह फैसला मरकजी एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फराहम की गई तफ्तीशी मालूमात की बुनियाद पर किया गया। NTA ने कहा कि यह इम्तिहान दोबारा कराया जाएगा, जिसके लिए अलग से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मई 2026 साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन की तफसीलात, उम्मीदवारों की मालूमात और इम्तिहान के लिए मुंतखब मराकज में कोई तब्दीली नहीं की गई और इन्हें दोबारा कराए जाने वाले इम्तिहान में इस्तेमाल किया जाएगा। एजेंसी ने बताया कि नए सिरे से किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी और न ही इम्तिहान की कोई इजाफी फीस ली जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के जाती मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की छानबीन अपने हाथ में ले ली है। रियासती पुलिस की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने आज बाजाब्ता तौर पर तहकीकात का काम अपने हाथ में ले लिया है। एक बयान में CBI ने कहा है कि उसके कोलकाता जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर की निगरानी में खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी जाएगी। इस दौरान CBI की एक टीम के आज मध्यमग्राम थाने का दौरा करने और उस जगह का मुआयना करने का इम्कान है, जहां पर कत्ल का ये वाकया पेश आया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला सुवेंदु अधिकारी के ज़ेर सदारत पहली काबीना मीटिंग के फ़ैसलों की सताइश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मगरबी बंगाल के लोगों की फलाह बहबूद आला तरीन तरजीह है। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि रियासत के लोगों को हिफ़्ज़ान सेहत से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत तक का रसाई हासिल होगी, जो आला मेयार के काबिल रसाई हिफ़्ज़ान सेहत को यकीनी बना। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि डबल इंजन की सरकार इस बात को यकीनी बनाएगी कि अहम मरकजी स्कीमों के फायदे लोगों तक बिला रुकावट पहुंचें। BJP के कौमी सदर नितिन नवीन इस माह की 18 तारीख को उड़ीसा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वो आला सतह के तंजीमी जायजे के लिए ये दौरा करेंगे, जिसका मकसद पार्टी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना है। इस दौरे का मकसद ये भी है कि BJP को पिछले साल असेंबली इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी मिलने के बाद समाज की निचली सतह पर BJP को मज़ीद मकबूल बनाया जाए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में 15 नर्सिंग पेशावरों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड नर्सिंग के मैदान में इनके गैर मामूली ताउन पर दिया गया है। ये अवार्ड मरकजी और रियासती हुकूमतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और रज़ाकार तंजीमों से वाबस्ता रजिस्टर्ड नर्सेज, दवाइयों मददगार और नर्स मिडवाइव्स और लेडी हेल्थ विजिटर को दिए जाते हैं। हर एक अवार्ड मेरिट

0: के एक सर्टिफिकेट, 1 लाख रुपये नकद रकम और इन सेहत कारकुनों के ज़रिए फ़राहम की गई बेशबहा खिदमात के तई कौमी के तशक्कुर का इजहार करने वाले एक मेडल पर मुश्तमिल है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा, सेहत के वज़राए ममलिकत प्रताप राव जाधव और सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। जदीद नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगल की उम्र पैदाइश पर आज नर्सों का बैनुल अक्वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है हमारी नर्सें हमारा मुस्तकबिल, बाइख्तियार नर्सें जिंदगी बचाती हैं। ये दिन मरीजों की देखभाल, कम्युनिटी हेल्थ और इक्तसादी तरक्की में नर्सों के रोल को तस्लीम करता है। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, इबादतगाहों और बस स्टैंड के नज़दीक वाक़ शराब की 717 दुकानों को बंद करने का हुक्म दिया है। ये दुकानें तमिलनाडु रियासती मार्केटिंग कॉरपोरेशन के तहत चलाई जाती हैं। रियासती सरकार ने एक बयान में कहा कि इस कॉरपोरेशन के तहत शराब की 4675 खुर्दा दुकानें चलाई जाती हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। जनाब हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी मियाद के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान पेपर लीक हो जाने के इल्ज़ाम के सबब मनसूख कर दिया गया है। सीबीआई से तहकीकात कराए जाने का हुक्म दिया गया है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की तहकीकात अपने हाथ में ले ली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से नवाजा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: फौजी वीरो एक बारी फिर स्वागत है। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते यानी आकाशवाणी जलंधर ते आकाशवाणी पंजाब ते प्रोग्राम चल रहा सी फौजी वीरा लई और अज असी गल कर रहे सी ओ गीतां दी जेड़े गीत डरावनी फिल्मों चले गए ने। जी हाँ, और बहुत सारे गीत असी सुन भी लए ने और होर बहुत सारे गीत मेरे को पे ने। इन्हों तो जो एक फिल्म अजिही भी है जिदे कुछ गीत सानू लगते नहीं कि हाँ भाई ये इदा दियाँ फिल्मों चो लए गए होंगे, क्योंकि वो गीतों के जोड़े बोल है ना वो बड़े अलग तरह के ने और नॉर्मल जे गीत लगते हैं। कोई विरहा का गीत होएगा और कोई गीत होएगा प्रेमी की याद दे विच, बट असल दे विच वो सस्पेंस थ्रिलर फिल्मां रही ने या वो रही ने अपने दौर दिया भूतिया फिल्मां यानी कि हॉरर फिल्मां। ये भी एक जोनर है अगर मैं गल करा ते फिर बहुत सारे गीत मेरे कोल पए ने। एक गीत होर सुना देवा। एक गीत इदा दी ही सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दा है और ये गीत आज भी उन्ने ही जड़े डरावनी आवाज़ दे नाल, मैं कहां कि डरावने तरीके दे नाल जड़ा है ना इनू गाया गया सी और सुनिया भी गया सी। जी मैं गल कर रहा फिल्म गुमनाम दी। जी हाँ, गुमनाम फिल्म मनोज कुमार दी फिल्म और इस फिल्म नू अपने समय दा सस्पेंस थ्रिलर किया गया, क्योंकि ये फिल्म शुरू इदा होंदी सी कि कोई डरावना जा माहौल है, एक टापू है और उत्ते सस्पेंस और डर दा जड़ा मिश्रण सी ना बहुत टॉप लैवल का मिश्रण सीगा। और हुण जे मैं गल फिल्म दी कीती है तां तुसी समझ गए होगे गीत केड़ा चलान जा रहा। लता मंगेशकर दी रूहानी आवाज़ और उन्हां दी आवाज़ दे विच जदो ये गीत चलदा है ना तां अज भी रोंगटे खड़े कर दिंदा है। ते सुनिए फिर ये गीत जिहनू गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्म गुमनाम दे विच लिया गया ये गीत तुहाडे सारयां दे लई।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: प्रोग्राम चल रहा जी फौजी वीरां लई, और फौजी वीरों से गल कर रहे सी अज डरावनी फिल्मां दी। और ये नहीं कि डरावनी फिल्मां पुराने समय विच ही बनदियां सन, हुण भी बहुत सारियां डरावनियां फिल्मां बनदियां हैं। और जे मैं अज दे समय दी गल करां तां एक डरावनी फिल्म, जिहड़ी फिल्म नहीं एक पूरी सीरीज ही बन गई, और 5-6 तरह दी अलग अलग फिल्मां उस ही थीम ते बनियां। मैं गल कर रहा फिल्म राज दी। जी हाँ, इहदे 3 पार्ट आए ने और तीनों जड़े पार्ट ने बा कमाल रहे ने। ते क्यों ना फिर प्रोग्राम दे आखिर दे विच इहदा ही कोई गीत सुनिया जावे, क्योंकि इन्हां दे सारे ही जड़े गीत सन बहुत वधिया गीत सन। राज नाम दे फिल्मां तां बहुत सारियां बनियां ने, लेकिन जिस फिल्म दी मैं गल कर रहा वो फिल्म सी राज 1, यानी जिहड़ी भूतिया फिल्म बनी सी, जिहदे विच तुसी डीनो मोरिया ते नाल उहनां दे बिपाशा बसु नूं वेख्या सी। ते उहनां दे भी बहुत सारे गीत जिहड़े ने मेरे कोल पए ने। ते आओ फिर उसे फिल्म दा एक गीत जिहड़ा बहुत चर्चित गीत होया सी ओह सुनदे हां। फिल्म राज चो लिया गया एक गीत जिहनूं गाया अलका याग्निक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরের নামত শপথ লওঁ যে বিধির দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি মই প্রকৃত বিশ্বাস আর আনুগত্য পোষণ করিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता

आयोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल

0: पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।

0: वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद

0: एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज थे। आकाशवाणी दाई जलंधर केंद्र है और समा हो गया है साढ़े प्रोग्राम रंगली धरती का लोक गीतां दा। प्रोग्राम जिहदे विच अज प्रसंग बाबा बंदा सिंह बहादुर सुनाया जाएगा और कलाकार होणगे मुख्तियार सिंह जफर ते उहनां दे साथी। ते आओ बस इस छोटे जिहे संदेश तो बाद सुनदिआं प्रोग्राम रंगली धरती।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: प्रोग्राम रंगली धरती दे विच तुहाडा सारयां दा स्वागत करदा है, तुहाडा अपना दोस्त कौरव। आओ सुनदे हां प्रसंग बाबा बंदा सिंह बहादुर मुख्तियार सिंह जफर ते उहनां दे साथियां वल्लों।
2: ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਦਮ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਣਗਿਣਤ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਫਤਾਰ ਦੇ ਗਾਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਤੇ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਡੰਡਾ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਗਾਜੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮਹਿਕੋ ਸੱਖਣੇ ਨੇ ਫੁੱਲ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਜ਼ਫਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਗਾਜੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਗਾਜੀ ਸਰਬ

खालसे दे मन दे विच दया भरी जालम दा सर्वनाश करन दी दृढ़ता भरी ताही तां करनैल सिंह पारस रामू वालिया श्रोमणी कमिश्नर लिखदा है पंथ तेरे दियां गूंजां जुगो जुग पैंदियां रहणगियां।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते बिल्कुल रब दी रजा दे विच कहंदे ने के रहना पैंदे ते रब दी रजा दे विच रहंदे होए चिट्ठी साडे तक पहुंचाई है जी कोठली कलां तो लिख रहे ने जी यादविंदर सिंह ते सुखविंदर सिंह रविंदर सिंह मनजीत सिंह ते गुरजोत सिंह दौलत बाग मुरादाबाद तो जाफर हुसैन नीमा बेगम कासम अली नदीम अली ते जनैद आबासी ते पिंड हैगा है जी गाजेवास ते लिखण वाले ने जी रणधीर सिंह मान मलकीत सिंह ते झंडा सिंह ते शादी सिंह ते गुलाब सिंह मान ते

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता है AIR पंजाब ते चिट्ठी आ गई है जी राजस्थान तो श्री करणपुर राजस्थान तो चिट्ठी है जी शिव कुमार सेठी लिख रहे ने ते इन्हां दे नाल सुनीता कमल ज्योति ते शब्द बाणी ते राजू टुटेजा इन्हां दे नाल ते लिखण वाले ने जी बिहार तो यह चिट्ठी है बक्सर बिहार तो शरफुद्दीन अंसारी ते फातमा खातून अंसारी ते पुराना तालाब डुमराव तो वलीउल्लाह अंसारी ते आसमा नाज़ अंसारी ते चमन पार्क दिल्ली तो डॉक्टर सोनम ते डॉक्टर दीबा ते सहारनपुर बक्सर तो राज एस डी अंसारी ते आसमा खातून अंसारी ते गुलफराज भागलपुरी ते लिखण वाले ने जी पिंड नथाणा है जिला बठिंडा है हरजिंदर छिंदा जसवीर रेखा गगन सोनी सीता और गीता ते दर्शन सिंह लिख रहे ने दर्शन सिंह सैनी लिख रहे ने वड्डियां जाला पटियाला तो चिट्ठी ते डब वाली हरियाणा तो लिख रहे ने जेके बकौलिया श्रीमती सुनीता बकौलिया संजय अनिल ते मीनू बकौलिया फरमाइश इन्हां सारयां दी दीप झंडू दी खूबसूरत आवाज़

बहिरगढ़ तहसील मलोट तो बलराज राम कालफा ते राम ते बेबी लक्ष्मी ते कुदरत मनप्रीत कालफा ते मेवा सिंह ते हरप्रीत ते इन्हां दे नाल शिवराज मान ते लिखण वाले ने जी राजकुमार नैयर सुनीता नैयर गौरव नैयर ते भावना नैयर ए लिख रहे ने जी ककड़ा ढाहा तो चिट्ठी इन्हां दी हैगी आ ते तहसील हैगी कहिंदे बला चौर ते लिखण वाले ने जी पिंड हैगा अतापुर कलोनिया जिला श्री फतेहगढ़ साहब रामनाथ अतापुर ते पोत्र इन्हां दा सुखमनजीत सिंह ते पोत्री सहजप्रीत कौर ते सुधीर नूतन संदीप गुगलानी सुनीता जैन सुनीता शर्मा इशप्रीत शर्मा ते इन्हां दे नाल हैगे आ जी बेपाशा शर्मा ए लिख रहे ने मॉडल टाउन करनाल तो चिट्ठी फरमाइश इन्हां सारिआं दी जुगराज संधू दी खूबसूरत आवाज़

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता है AIR पंजाब ते जांदे जांदे असी चिट्ठियां शामिल कर रहे हैं जी। आदर्श नगर मलोट तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा ते निवान शर्मा। पंचकुला सैक्टर 9 तो आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी धवन ते लव ते राधे भाविक ढींगड़ा। तो लिखण वाले ने जी अमन वर्मा, रमन ते इन्हां दे नाल दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा ते सारा वर्मा परिवार लिख रहे ने। पिंड हैगा बुरज हनुमानगढ़ फाजिलका तो बस स्टैंड ते कहिंदे नेड़े पै जांदे। ते हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, ज्वाला सिंह ते डॉक्टर धर्मवीर झोरड़, मुकेश जांगू, जगसीर सिंह ये लिख रहे ने जी। राजपुरा पिंड हैगा इन्हां दा ते तहसील हैगी अबोहर जिला फाजिलका। चौधरी रणधीर, बांगड़ गुरमेजो, गौरव परवीन, योगा वीरेन ते मनराज इन्हां दी चिट्ठी हैगी है जी। पिंड चगोड़ी यमुना नगर तो कस्बा रादौर है। तो लिखण वाले ने जी अलीका तहसील डबवाली तो रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, राणी सोनू ते रजनी ते विजय पूजा अनीता के त्यार के कौंडल पवनाल हाजीपुर तो इन्हां दी चिट्ठी। ते अमरगढ़ तहसील साधु शहर तो कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, हरविंदर मान ते राजा सिंह मान ते कुलविंदर कौर मान ते के एस मान। ते लिखण वाले ने जी गगड़ शहर हाजीपुर तो केर सिंह, चिन्नत राम, मोहन लाल ते गुरमेल सिंह ते मासी इन्हां दे संदेश ते मास्टरदार राम ते मासी जी कहिंदे ब्यासो भी साडे नाल आ। ते लिखण वाले ने जी सैक्टर 67 मोहाली तो चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, अमित वर्मा ते जयवीर सिंह ठाकुर ते डॉक्टर अमनदीप ते कालका तो इन्हां दे नाल हैगे जी शुभ चंद्र बजाज, साहिल ते पिट्टा बजाज। ते चिट्ठी लिखण वाले ने जी राजू टुटेजा, खुशदिल मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू ते अमृत बड़वाल, शिव सेठी, करणपुरी, स्माइल टुटेजा इन्हां दी चिट्ठी हैगी जी। पिंड गोविंदगढ़ माझीवाला, श्री करणपुर, राजस्थान तो ते श्री गंगानगर तो बजरंग लाल शर्मा, गढ़ जगमोहन सिंह अनेजा ते दिनेश कुमार शर्मा ते नरेश कुमार शर्मा जी की चिट्ठी। ते डॉक्टर बनवारी जयपाल ते बिमला जयपाल, सोनू जयपाल ते ममता जयपाल, मोक्ष दिशा सुदर्शन ते विक्रम जयपाल आरायण तो इन्हां दी चिट्ठी है। ते कित्थे पै जांदा ये थोड़ा इन्होंने क्लीयर नहीं किया। तो पिंड हैगा पंगाला जिला फाजिलका तो जगतार गिल, गुरमीत गिल, नाजम गिल, सुखमन गिल ते कमलदीप गिल, एस के शर्मा ते जगतार टेलर। तो इन्होंने सारे का असी नाम प्रोग्राम दे विच शामिल किया। तो वेला हो चुके इजाजत लैण दा ते जाते जाते असी आवाज़ सुनते हैं जी सतेंद्र सरताज की खूबसूरत आवाज़ में असी सुनेंगे। तो लवली लैगी इजाजत, साथ इस तरह चलता रहेगा, स्टे ट्यून्ड।

और उस गीत दे विच शमशाद बेगम ने, और शमशाद बेगम दे नाल मुहम्मद रफ़ी जी, या इन्हां दोनों की जिहड़ी है जोड़ी है ना, इन्होंने कमाल कीता है। फिल्म है यमला जट, पुरानी पंजाबी फिल्मों दे विच मील दा पत्थर साबित हुई है फिल्म। और इस गीत नू लिखिया है वर्मा मलिक ने, और संगीतबद्ध भी कीता है वर्मा मलिक ने। तो आओ फिर सुनिए ये अमर गीत।

प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी फिल्म संगीत और वक्री वक्री पंजाबी फिल्मों के बीचों तुसी वक्रे वक्रे गीत सुन रहे हो। प्रोग्राम का आखिरी गीत चलान जा रहे हैं। उस आखिरी गीत को भी तुसी सारिया ने बहुत बारी पहले जरूर सुनिया होना और सुनिया भी होना है और उन्ना ही पसंद भी किया होना है क्योंकि ये गीत भी उदा का ही है। जी हाँ, इस गीत में लिया गया है फिल्म जट्टी दे विच्चों। 1979 दे विच्चे फिल्म आई सी और ये सारे गीतों को ही बहुत पसंद किया गया सी क्योंकि ये गीतों को गाया सी महेंद्र कपूर ते आशा भोंसले होरां ने। तो फिर प्रोग्राम दे आखिर दे विच इन्हां दा ही गाया होया ये गीत सुनते हैं।

हरे नमस्ते हरे नमः, हर हर करत नहीं दुख जमै। ए फरमान प्रभु दे अनन प्यारे भगत भगत नामदेव जी द्वारा उचारित है। भगत नामदेव जी दुखां दा नास करन वाले करता पुरख नूं नमस्कार करदे हन, उहदे अगे सीस निवाउंदे हन। नमस्कार करन दा रवायती ढंग दंडवत हो के नमन करन दा सी। राग बिलावल विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती करदे ने कि हे प्रभु जीओ, आप जी मेरे प्राणा दे आसरे हो, मैं आप जी दे अग्गे दंडवत हो के नतमस्तक हुंदा हाँ ते आप जी तो अनेका वार बलिहार ने जांदा हाँ। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, नमस्कार दंडौत बंदना अनेक बार जाओ बार है। सरवण करदे हां भाई गुरमेल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, नमस्कार दंडौत वंदना अनेक बार जव बार है। आप जी सरवण कर रहे सो भाई गुरमेल सिंह ते उना दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1301 ते साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा कानुड़ा राग विच उचारित शब्द सुशोभित है, जिस विच आप जी नर रूप विच अकाल पुरख दे अवतार नू ते कुल मनुखां दी पत रखण वाले नरपत नू नमस्कार करदे ने। आप जी उस मुक्तिदाता अकाल पुरख तों बलिहार जांदे ने। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर कौ बल बल जाई है, आप मुकत मोहतार है। सरवण करदे हां डॉक्टर अलंकार सिंह होरां द्वारा गायन कीता होया।

एस तिसह आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। आप जी सरवण कर रहे सो भाई इकबाल सिंह ते उना दे रागी जत्थे पासों इना पौड़ियां दा गायन।

0: 864 किलो हर्ट्ज़ एफएम बैंड 100.8 मेगा हर्ट्ज़ फाजिलका, एफएम बैंड 100.9 मेगा हर्ट्ज़ कसौली ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6 बज रहे ने। हुण तो कुछ ही पलां दे इंतजार तो बाद तुसी सुनोगे हिंदी समाचार साडे दिल्ली केंद्र तों।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया।

0: गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले शाम के 6:05 हो चुके हैं। आ हुण जानते हैं अज रात तक के बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम पेश कीता जाएगा, जिस विच होणगीआं कम दीआं गल्लां। नरमे दे कीड़े दी रोकथाम इस बारे जानकारी देंगे विजय कुमार। झोने दी सिद्धी बिजाई लई वख-वख मशीनां दी वरतों इस बारे जानकारी देंगे डॉक्टर अजैब सिंह। कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा। इस तों अलावा थोड़े मनोरंजन लई गीत संगीत भी होएगा। शाम 7:40 ते अंग्रेजी वार्ता पेश की जाएगी। होम इज वेयर द हार्ट इज। वार्ताकार होंगे सोनिया एब्रोल। रात 8 बजे प्रोग्राम पेश किया जाएगा जिंदगी हसीन है। रात 9:15 बजे आएगा प्रोग्राम स्पॉटलाइट साढ़े दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 बजे प्रोग्राम पेश करांगे खेड संसार। आज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे अर्जुना अवार्डी ट्रिपल जंप एथलीट अरपिंदर सिंह होरां नाल कीती गलबात। रात 10:02 ते शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम होएगा सुरसाधना। आज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे बीएस नारंग दा गाया राग रागेश्वरी। रात 10:30 बजे तुसी आनंद माणोगे प्रोग्राम सरगम दा। स्वैसी अज रात तक के बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समा। इस तों इलावा हिंदी पंजाबी ते अंग्रेजी समाचार अपने अपने समय ते प्रसारित कीते जाणगे। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र। हुण पेश है देशभक्ति समूह गाना।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।
4: पुलिस
5: मिस सीमा।
4: हां जी,
5: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तो कारा जावांगे। हां
4: क्यों? पर मैं
5: कल्ले दूजे कमरे विच जाऊं। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल

0: हाँ जी बाल साहब, अज ना एक जिदा अपना 90 साल का सिलसिला है, सुनेहा सरदार मनप्रीत सिंह बादल होरां दा
1: जी
0: आकाशवाणी के 90 साल इस से बापत
1: सुना दियो जी।

0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: ते सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लग दी है, मुबारका फेरते। पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाने की गलता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ये ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगते।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: आकाशवाणी जलंधर ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। हर कोई जिंदगी दे विच सिर्फ और सिर्फ शांति चाहुंदा है, सुकून चाहुंदा है। इसलिए तां असी दिन रात भज दौड़ कर रहे हुंने आ कि भई किसी तरीके सानू शांति मिल जाए। ऐसे तरह की एक छोटी जी कहानी है, तुसी भी जरूर सुनी होएगी। एक बार फिर असी रिवाइज करते हैं। कहिंदे कि एक पातशाह लड़ाइयां लड़ रहा सी और एक तो बाद एक जंग वास्ते ओ जा रहा सी और रस्ते दे विच ना उसनू एक फकीर नज़र आउंदा है। ते राजा सोचता है कि चलो जांदे जांदे इहनू भी मिल लैंदे आ, कोई गलबात कर लैंदे आ, हो सकदा कोई चंगी गल दस दवे। तां राजा उस फकीर दे कोल पहुँचदा है ते उस

0: कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने SP वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक S कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर

0: चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
1: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यवसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
2: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: आईसीसीआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों

0: के साथ हैं अमित गोयल।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटन्स ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हो गए तो मैनू
1: अच्छा
0: हो गया भी चलो गोल्ड आ गया अपना। फिर
1: अच्छा
0: लास्ट जंप मैं उदा ही अपना खाली 99 मार के ही दिता छड़ता।
1: अच्छा
0: तो फिर जो मैं अपना लै के अपने की कहते फ्लैग लै के जो मैं ट्रैक के एक लाया राउंड लाया
1: हाँ
0: तो वो एक अपने आप के बड़ी वधिया सी फीलिंग। तो उस तो बाद
1: हाँ
0: विक्ट्री सैरेमनी सी
1: हाँ
0: तो नैशनल एंथम रहा वज रहा है ठीक है।
1: हाँ
0: तो वो एक बड़ी अपने आप वो मैंने हजे भी क्लीयर क्लीयर कट जा रहा फीलिंग भी किदा वाली फीलिंग सी वो
1: रोंगटे खड़े होंगे है जी उदो
0: बिल्कुल 100% सी रूम ते
1: जदों
0: खड़े
1: नैशनल एंथम वजदा और
0: जी।
1: तिरंगा झूल रहा हों गल च तुहाडे गोल्ड मेडल है ते रोंगटे पूरी तरह खड़े होंगे है ना।
0: रोमटे खड़े उस टाइम मेरे भी चल रहे मैं भी वाहिगुरु तेरा ला शुक्र है लख लख तेरा हैगा शुक्र है भी इन्ने सालों की मेरी हैगी मेहनत है तू उन्होंने लाए भाग लाए आ तो
1: हाँ
0: लख लख तेरा शुक्र है
1: जी सो अरपिंदर जी तो बहुत करता सी कि तुहाडे जीवन बारे होर बहुत सारिया गल्लां बातां कीतियां जाण पर खेड संसार प्रोग्राम च सानूं समय दे दायरे च भी रहना पैंदा है जी। सो
0: जी।
1: बहुत मज़ा आया तुहाडे नाल गल्लबात करके ते असीं आस करते हाँ कि आने वाले समय च भी तुसीं भारतीय एथलैटिक्स लई इदां ही शुभकामनावां मंगोगे और होर जिहड़े तुहाडे जूनियर्स ने उन्हां दा सहयोग करते रहोगे। बहुत
0: जी
1: बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच सर थैंक यू।
1: खेड संसार
2: हुणे तुसी सुन रहे सी खेड संसार प्रोग्राम च अर्जुना अवार्डी ट्रिपल जंप एथलीट अरपिंदर सिंह होरां नाल कीती गलबात। इन्हां नाल गलबात कर रहे सन बिरिंदर सिंह पेशकश प्रतिष्ठा जैन। ई आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है।
1: हेलो
3: यह आयकर विभाग है आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
4: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लई रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो सुरक्षित रहो।
1: हेलो
3: यह आयकर विभाग है आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
4: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लई रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो सुरक्षित रहो।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले रात दे 10 बज चुके ने। हुण पेश ने मुख खबरां। भारत 14 अते 15 मई नूं ब्रिक्स विदेश मंत्रियां दी मीटिंग दी मेज़बानी करेगा। वणज अते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आर्थिक तकनीकी ते भू राजनीतिक समेत सब तरह दीआं चुनौतियां दा मुकाबला करन दे समर्थ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने 3 मई नूं होई नीट UG 2026 प्रीख्या दे संचालन विच कथित बेनीमियां अते पेपर लीक दे संबंध विच एक FIR दर्ज कीती है। CBI ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो दे अधिकारियां नाल जुड़े 20 लाख रुपए दे कथित रिश्वतखोरी दे मामले विच 3 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार कीता है। भारतीय जनता पार्टी दे सीनियर नेता हिम्मत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूजी बार असाम दे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकी। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने अज सनअत अते व्यापार मंत्री दा वाधू चार्ज संभालिया। पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने मेरा घर मेरे नां योजना तहत 393 परिवारां नूं मालकाना हक सौंपदिआं मलकीयत दे दस्तावेज वंडे। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दीआं 10वीं जमात दीआं प्रीख्यावां विच पंजाब भर च पहला स्थान हासिल करन वाली हरलीन शर्मा, दूजा ते तीजा स्थान हासिल करन वाले मनी महेश शर्मा ते रिया राणी नूं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों विशेष तौर ते सन्मानित कीता गया। माता भद्रकाली जी का मेला पलके कपूरथला के पिंड शेखूपुरा विखे पूरी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है। मेले की महत्ता नूं मुख रखदिआं कपूरथला अधीन पैंदे सरकारी अदारिया निगम बोर्डा विद्यक अदारिया अते होर सरकारी संस्थावां विच पलके लोकल छुट्टी का ऐलान किया गया है। अबोहर हनुमानगढ़ सड़क ते रामसरा पिंड नेड़े एक दर्दनाक हादसे विच 3 लोगों की मौत, एक औरत ते एक बच्चा जख्मी। IPL क्रिकेट विच अज अहमदाबाद गुजरात

सरगम दा अगला नगमा पेश है फिल्म आपके साथ तो, आवाज़ लता मंगेशकर दी, गीत दे बोल लिखे आनंद बख्शी ने, ते तर्ज दिती लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो सरगम। सरगम दा अगला गीत फिल्म तेरी मेहरबानियां तो। आवाज़ां शब्बीर कुमार ते अनुराधा पौडवाल दियां, गीत दे बोल लिखे SH बिहारी ने ते संगीत दिता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: ਇਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से

0: रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK legislature party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former Minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office and secrecy to him at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati. Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several Union Ministers and Chief Ministers from NDA-ruled states attended the ceremony. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice

0: जी नवीपुर कुंडी जिला गुरुदासपुर पंचायत गर्मी
1: मीठा जी की हाल चाल है थोड़े?
0: गला बहुत
1: चलो वजिया जी, चढ़दी कला ही रहनी चाहिए है। ते की कर रहे थे इस वेले?
0: हाँ जी। इस
1: इस वेले की कर रहे थे? तो
0: वेले प्रोग्राम जो है
1: फोन कॉल पहला तो ला रहे हो जदों प्रोग्राम शुरू होया जा हुणे लानी शुरू
0: मैं
1: कीती?
0: कभी सब तो पहले जो बनाया मैं साड़ा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मैं पहली कॉल लाई लगी पर किसी
1: नहीं
0: दूसरी
1: नहीं
0: लगी तीसरी लगी
1: देखो जी, जदों तक साढ़े कोल पहुँचती है कॉल असीं नाल ही चक लैंदे हाँ, तो जिहड़ी कॉल तुहाडी इत्थे तक पहुँच गई आपां चक लईए। तो कि गीत की फरमाइश लैके आए हो अज?
0: दुर्गा साहब का सुना दो जी लूर लूर करे नैना
1: बिल्कुल ठीक है जी, मैं थोड़ी फरमाइश से गीत लेकर जा रहे हैं। कॉल करने के लिए शुक्रिया।
0: ओके ओके
1: थैंक
0: बहुत
1: यू
0: मजा
1: जी,
0: आता जी प्रोग्राम का जी
1: बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी,
0: ओके सर
1: थैंक यू जी।

आने मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, गुड़िया माही मलिक ते इशिता अरोड़ा। ते आओ जी फिर इन्होंने सारे दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं प्यारा जहा गीत।

सो बिल्कुल जी, मैं भी जट लुधियाने दा। कितना जगह रहे तुसी? हरचरण गरेवाल और सुरेंद्र कौर जी की आवाज़ दे ते प्रोग्राम चल रहा है जी। सौगात ते दोस्तों दे मैसेजेस साढ़े तक पहुँच रहे हैं जी। अगला मैसेज साढ़े को पहुँचा है जलालाबाद पच्छमी तो भेजा है सुरेश गगनेजा जी ने। इन्होंने नाल ने जी पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। तो इस नाल ही एक मैसेज साढ़े तक होर पहुँचा है जी। ये मैसेज देखते हैं कितों आया है। ये मैसेज साढ़े को पहुँचा है जी सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो भेजा है TD मल्होत्रा जी ने। इन्हों के नाल ने जी रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप ते कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज। तो एक मैसेज होर पहुंचा होया जी। इस मैसेज में भी आप ही शामिल कर लेंगे। ये आया जी साढ़े को पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो भेजा है हरजिंदर सिंधा जी ने। इन्हों के नाल जी जसवीर, जसी, सीता और गीता। तो आओ जी फिर इन्होंने सारे दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं पैरा जा गीत बब्बू मान साहब के वास्ते।

बिल्कुल जी, दिल चोरी साडा हो गया। की करिए की दसे करे से हंस रहे हंस साहब की आवाज़ से भी। अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी। जनक नगर जलंधर तो भेजा है सुखदेव सिंह जी ने। इन्हों के नाल ने जी नरिंदर कौर, सनी मनी, काका, बिट्टू, लाडी, मोहन मास्टर। ये मैसेज साढ़े तक जनक नगर जलंधर तो पहुँचा है जी। और इन्होंने नछत्र गिल साहब की आवाज़ से की थी, फरमाइश की थी है। तो आओ जी फिर इन्हों की फरमाइश से सुनते हैं प्यारा जहा गीत नछत्र गिल साहब की आवाज़ में। इस दे नाल ही साढ़े को एक होर मैसेज आया है जी नछत्र गिल साहब की आवाज़ में। उन्होंने भी फरमाइश की है। सो मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी। कनेरा मोहल्ला पटियाला तो बत्ता परिवार वालों भेजन वाले ने मुकेश बत्ता जी। इन्होंने नाल ने नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक देव।

0: बिल्कुल ठीक किसी शादी दो चा दिल तो में टूटते जरूर ने कितने जगह नक्षत्र के साथ होती आवाज तो बीते प्रोग्राम सुगा चल रहा जी और दोस्त भी पहुंच चुके ने। हेलो
1: हेलो, नमस्कार करण जी।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुगात।
1: श्री गुरु रविदास नगर मोड़ तो किस तरह से रहेंगे जी?
0: हाँ जी रसकनिया साहब, की हाल चाल है जी थोड़े?
1: ठीक है जी, तू सुनाओ आओ ना।
0: जी
1: ठीक है जी,
0: साढ़े भी बहुत वधिया ने जी, बहुत अच्छे ने, तो थोड़ी कॉल आ गई, हाल चाल होर वधिया हो गए।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: सो केड़े गीत की फरमाइश लेके पहुंचे फिर अज?
1: आज फिर कंठ फिर साहब का गीत सुना दो जानगी जी।
0: बिल्कुल ठीक है जी, मैं थोड़ी फरमाइश तो गीत लेकर जा रहा हूँ, कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: बहुत बहुत थैंक यू,
0: थैंक यू
1: चलो
0: जी,
1: जी।
0: थैंक यू। सो बिल्कुल दोस्तों, एक नज़र असी व्हाट्सएप मैसेजेस के वाल भी मार लेने जी, केड़े केड़े दोस्तों के मैसेज आए हैं। मैसेज साढ़े तक पहुँचे है जी, वीपीओ जी का डिस्ट्रिक्ट बठिंडा तो, हरजिंदर सिंह बराड़ जी का, तो इस नाल ही एक मैसेज साढ़े तक होर पहुँचा है जी। ये मैसेज देखते हैं कितों आया है जी, ये मैसेज आया है साढ़े को बाजवा कलोनी गुरदासपुर तो, प्रीतम चंद जी का, इन्हों के नाल है जी अनमोल दीपक, तो गुरदास मान साहब की आवाज़ में इन्होंने गीत की फरमाइश की है जी, तो बिल्कुल इन्हों की फरमाइश भी असं जरूर पूरी करांगे इस गीत तो बाद। एक मैसेज साढ़े तक होर पहुँचे है जी, मैसेज आया है मेरा मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र तो यशपाल धीमान जी वालों, इन्हों के नाल है जी श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, कमल धीमान, शुभम धीमान, प्रियंका धीमान, आंचल धीमान, कुंजी धीमान, पर्व धीमान, प्रवीण धीमान, चिराग, रजत धीमान, राजेश धीमान, कुंज धीमान, ते इन्हां दे पूरी फैमिली। सो आओ जी फिर इन्हां सारे दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं, पहला कंठकले साहब की आवाज़ में गीत, तो फिर उस तो बाद अगला गीत असी गुरदास मान साहब की आवाज़ में सुनांगे।

तुर्की बाणी इलाही इल्हाम है, शब्द है, सद है, ब्रह्म है। सदनू आवाजा भी क्या जानदा है, आवाज भी क्या जानदा है। अकाल पुरख नाल स्नेह रखण वाले प्राणी, सच्चे गुरु नाल स्नेह रखण वाले प्राणी, सच्चे गुरु दा बचन सद दे रूप विच सरवण करना लोचदे ने। उते ऐसे गुरु तो कुर्बान जांदे ने, जिदा सोना शब्द सरवण करके, जिसदी महिमा सरवण करके मन मौलिया जांदा है। ऐसे गुरु नू ओ अपना मन अर्पण करदे ने, ते वारने जांदे ने। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। सरवण करदे आ भाई रविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

0: सदड़ा सुनी जय पाई, जी को बह अलाए। आप जी सरवण कर रहे सो डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उना दे जत्थे वलों गायन कीता होया ए शब्द। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बलविंदर सिंह।
1: सोही महला पहलम, जोगी होवे जोग वै, भोगी होवे खाए, तपिया होवे तप करे, तीर्थ मल मल नाए। तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को बहे अलाए। रहाओ जैसा बीजे सो लूने, जो खट्टे सो खाए। अग्गे पुछ न होवई जे सण निशाने जाए। तैसो जैसा काढ़िए जैसी कार कमाए, जो दम चित न आवई सो दम बिरथा जाए। ए तन वेची बै करी जे को ले वकाए, नानक कम न आवई जित तन नाही सच्चा नाओ। ए शब्द पहले पातशाह जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी का उच्चारण किया होया सोही राग अंदर सुशोभित है। इस शब्द विच श्री गुरु नानक देव जी ने एक अकाल पुरख की सिफत सलाह ते नाम बाणी नाल जोड़िया है। सतगुरु शब्द के रहाओ वाली पंक्ति विच प्रमाण करते हैं, तेरा सदड़ा सुनीजै भाई, जे को बहे अलाए। रहाओ हे मेरे प्यारे प्रभु, हर को मनुख तेरी खुशी लैण वास्ते, मुक्ति की प्राप्ति वास्ते वखरे वखरे कर्म करता है। कोई जप, कोई तप, कोई योग कमाउंदा है, पर मैं मूर्ख तेरी सिफत सलाह रूपी बाणी संदेशा ही सुनता हाँ। मैं तेरी नाम बाणी नाल ही जुड़िया हाँ, जे को मैंने तेरी सिफत सलाह सुनावे। श्री गुरु रामदास जी बाणी।

कहा लो भाई है आन कौ, ईत ऊत प्रभ सदा सहाई, जी संग तेरे काम कौ। आप जी सरवण कर रहे सो भाई बहादुर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द।

0: दुख दारू सुख रोग भया जा सुताम ना होई। तू करता करना मैं ना ही जाहो करी ना होई। भले हारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ। जात में जो जोत में जाता कलकला भर पूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन की तिसो पार पया। कहो नानक करते किया बात जो किश करना सो कर रहया महला दूजा।
1: जोग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्राह्मण है। खत्री शब्दन सूर शब्दन सूद्र शब्दन पुरा करत है। सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने पे नानक ताका दास है। सोई निरंजन दियो महला दूजा।
0: एक कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास दे बस्य जे को जाने पेयो नानक ता कदास है। सोई निरंजन दियो महला पहला।
1: कुंभे बद्दा जल रहे जल

निदान हर मन करो, ध्यान ऐ नस करो, वचन गुर हृदय धर, फुन गुरु जल बिमल, अथाह मजन करो, संत गुर सिख तरो, नाम सच रंग सर, रा निर्वैर निरंकार निरभउ जपे, प्रेम गुर शब्द कर, कर दिलहि भगत हर, मुग्ध मन भरम तजो, नाम गुर मुख भजो।

शरण सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो पल शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेकलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुर्त दवन सकल

0: नानक मेर शरीर का एक रखी करतवा हो, जुग जुग फिर बटाइया ज्ञानी बुझे ताहे, साजुगरा संतों का धर्म गैरतवा हो, त्रित राज तय का जोर गैरतवा हो, वापुरा तपै का सत गैरतवा हो, काल जुगरा थ्यगन का कूड़ अगैरतवा हो। महला पहला।
1: साम कहे स्तंभ स्वामी सच में अच्छे साच रहे, सबको सच समावे, रिक कह रहे प्रभु राम नाम देवा में सूर, नाय लय प्राच जाय नानक तो मुखंत्र पाए, जुज में जोर छली चंद्रावल पान, कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया, वृंदावन में रंग किया, काल में वेदो थर्वण हुआ नव खुदाई अलो भया, नीर वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया, चारे वेद हो इस चार पढ़े गुण तीन चार विचार,

0: अति दीर्घतमुच ओए जे अभ्यास कर जा इंद्रा से कित फल फिके फुल बकबके कामना आवे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइया तत सब को निवै आपको पर को निवै ना कोए धरता राजू तो लिए निवै सो गौरा होए अपराधी दूना निवै जो हंता मृगा हे शीशनी वह क्या थी है जारी दे कुछ दे जाहे महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या वादन शिल्पू जिस भगत समादन मुख चूट विभूखन सारंग कृपाल तिहाल विचारन गलमाला तिलक लाटंग दो धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मण करवन सब फोकट नेचो करवन कहु नानक नेचो त्यावे विन सतगुरु।